0: कदी नथा कदे में तक झण था तक दे में तक झण तक दे में तक झण ताकर तक तक झण तलिंग तक तक झण कर तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक तक
1: Tak it.